0: मानो।
1: ठीक है तो मैं सारी रात यही रहूंगा, लोग मुझे उठा कर ले जाएंगे, तब आना, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी।
0: Get lost.
1: पक्का नहीं मान रहा?
0: हाँ नहीं मानो, जो करना कर ले, घड़ी घड़ी ड्रामा करती है
1: राजा। ठीक है

नमस्कार, मैं नाइकवाड़े नगर तालुका मोहोड़ जिला सोलापुर से सरपंच शेख बोल रहा हूँ। मैडम, आपने जो बिग स्टार जो अभिनेत्री जूही चावला इनके ऊपर जो पेश किया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिल को छू गया। इस शो के जरिए से जितनी जानकारी आपने जूही जी के बारे में दी उन्हें सभी पसंद आई, हमें बहुत ही अच्छी लगी। और आपके कहने के मुताबिक तो उनकी जो एक शैली है बहुत ही अलग निर्माण की थी उन्होंने, क क क किरण वाली, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आपने जिस अंदाज में बताया वो, और बहुत अच्छा लगा। और उदित नारायण जी के ऊपर जो बिग स्टार किया था आपने वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। एक रिक्वेस्ट जो है मेरी, काफ़ी दिल से है मेरी आपसे, कि पेटे सर का जो एक स्वर बहार था जो लड़की इस थीम को लेकर उन्होंने किया था वो मुझे फिर से एक बार सुनना है, और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मुझे फिर से एक बार आप अगर सुनाएंगे तो बड़ी मेहरबानी रहेगी। मुझे काफ़ी पसंद आया था वो उनका स्वर बहार जो लड़की थीम पे था। आज के इस कार्यक्रम के लिए जो मुझे गाना सुनना है वो हिम्मत फिल्म से है, कुमार सानू और अलका याज्ञिक का गाया, बहुत ही बढ़िया गाना है हिम्मत फिल्म का, वो गाना मुझे आप सुनवा दीजिए।

ना ये गाना मुझे सुनना है। काफी दिनों के बाद मुझे आज ये गाना सुनने को मिलेगा व्हाट्सएप फरमाइश के थ्रू, और आप जरूर सुनवाएगा मैडम ये गाना। इस गाने को सुनने के लिए कुबीर मस्के, मोहम्मद आजम, मोहम्मद अत्तार, अमोल कामड़े, अरमान इरम, अलीना कबीर, तमन्ना भाभी, सुफिया वाइफ,

0: की डोली में आई झील मिलाती जुगनू की बारा।
1: सबके होठों पे ठहरी थी आके कोई बात।
0: ढोल मंजीरे बजने लगे, बड़ी डफली पर था

0: पर शिष्यवृत्ति।
1: संपर्क प्राचार्य डॉक्टर डीबी मोरे सर, तेरणा महाविद्यालय, एमआयडीसी परिसर, धाराशिव। मोबाईल 94 22 96 96 78, 94 21 358 408 आणि 94 21 36 10 71।

0: देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो।
1: ए टोनी फर्नांडिस बेबी

टकराऊं मैं दीवाना, जल जाऊं बनके क्षमा का परवाना। मरना जीना खाना पीना हंसना रोना नहाना धोना सोना उड़ना चलना पिन्ना आना जाना, हम दीवाने ने मोहब्बत में बुलाया हमको तुम पे जान।

सागर सागर नया सागर कोई ले ले मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम ये जो

0: छी छी छी, मुझे तो देख के शर्म आ रही।
1: वहां जाते शर्म नहीं आती?
0: वहां की और बात है, वो घर की औरतें नहीं, उनका तो काम ही यही है मर्द को रिझाना।
1: और घर की औरत का ये काम नहीं अपने मर्द को रिझाना? जो नहीं रिझाती वो मर्द खो बैठती है।
0: ये भी कोई बात है? छी छी
1: छी, तुम पर, तुम्हारे बूढ़े ख्यालों पर।
0: बूढ़े ख्याल? कौन कहता है मेरे ख्याल बूढ़े हैं?
1: मैं कहती हूँ तुम्हारी बीवी स्कॉडर्न लीडर सुंदर, तुम्हारे ख्याल भी बूढ़े हैं, तुम बुढ़े हो।
0: मैं बुढ़ा?
1: हाँ बुढ़ा।